आवाज की दुनिया के संगीत प्रेमी दोस्तों, आज 11 अक्टूबर के महक कार्यक्रम में आपका आदर है, अभिनंदन है और सुखदेव जसवाल का सादर नमस्कार है। घर में अगर बच्चों की चहक हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसी महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन की कोशिश का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं, सुखदेव जसवाल।

11 अक्टूबर के इस महक कार्यक्रम में आज आपके लिए पेश करूंगा जिनको द हिट गर्ल कहा गया था, क्योंकि वो एक हिट के बाद दूसरी हिट, तीसरी हिट, चौथी हिट, पता नहीं कितने हिट्स देती रहीं अपने करियर में। नाम आशा पारिक। हम श्रद्धांजलि देंगे सूबेदार जोगिंदर सिंह परमवीर चक्र विजेता। हम श्रद्धांजलि देंगे शहीद आजम भगत सिंह जी को। कार्यक्रम में आपकी पसंद और कुछ मेरी पसंद के गीत पेश करेंगे आज, और अपनी पसंद हम तक पहुंचाने के लिए बहुत ही आसान है, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए 02-9816-2777, 02-9816-2777, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश आप तक लाने की। कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा ऑनलाइन सुन सकते हैं www.2RRR.org.au पे लिसन ऑनलाइन प्ले बटन, www.2RRR.org.au लिसन ऑनलाइन प्ले बटन। अपने मोबाइल पर भी इसी तरह से सुन सकते हैं, या फिर एक मुफ्त ऐप डाउनलोड कीजिए कम्युनिटी रेडियो प्लस। कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप डाउनलोड करके अपने फेवरेट ऐप स्टोर से आप अपने मोबाइल के साथ जो आपका दोस्त है कहीं भी हो दुनिया में, आप सुन सकते हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम।

इस बीते सप्ताह हमने एक बहुत ही अच्छे महान कलाकार को खो दिया। नाना पाटेकर जी का 8 अक्टूबर को 75 साल की आयु में स्वर्गवास हो गया और ये उनके गोवा के निवास में जहां उनका एक अपार्टमेंट है वहां पर वो गए थे और वहीं पर दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली, एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान, इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े, रेंगते रहो, सटते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, सब साले मुर्दे जिंदा लाशे, किसे जगाती वो। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है, लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था, भाड़ में।
1: नाना पाटेकर जी मशहूर थे फिल्मों में ऐसे डायलॉग बोलने के लिए जो समाज में जागरूकता लाती थी, सबको सोचने पर मजबूर करती थी, और इसी महान हस्ती को हमने खो दिया 8 अक्टूबर 2026 को 75 साल की आयु में। उनको श्रद्धांजलि देने में शामिल थे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आर माधवन, कंगना रनौत, महाराष्ट्र के कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर आशीष शेलार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, शत्रुघ्न सिन्हा, मिनिस्टर फॉर रोड्स नितिन गडकरी और इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महेंद्र।
0: ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा, एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका, एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में तीसरी में, मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ, क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या, हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना, जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो, मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला चल चल ला।
1: और उनका जो इच्छा थी, उनकी, नाना पाटेकर जी की इच्छा, उस इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को उनके पुणे के डोंजे गांव के फार्म हाउस में लाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, और राजकीय सम्मान के साथ 8 अक्टूबर को ही शाम को उनका दाह संस्कार किया गया। अपने अंतिम संस्कार के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने 22 टन सूखी लकड़ी लेकर रखी है अंतिम संस्कार के लिए, सूखी इसलिए कि धुआं ना हो, आए लोगों की आंखों में इस वजह से, गीली लकड़ी की वजह से आंसू ना आए, और लोग ये ना समझें कि आंसू उनके लिए बहाए जा रहे हैं। ऐसे विचार थे नाना पाटेकर जी के, और उनको सम्मान देने के लिए पुलिस द्वारा 21 गन का की सलामी दी गई, और उनके अंतिम संस्कार में अन्य लोगों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी शामिल थे।
2: ये फांसी नहीं हो सकती, उन देशद्रोहियों के खिलाफ जो सरकार को सबूत मिले हैं उसे साबित होता है कि प्रताप ने उनको मारकर देश का उद्धार किया है।
1: जी हाँ, फिल्म में तो वो बच गए थे, लेकिन असली जीवन में जो होता है वो फिल्मों के जैसा नहीं होता, और ऐसा ही हुआ उनके साथ भी, और वो हमें छोड़कर चले गए, और हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे अपने मन में और उनकी फिल्मों के द्वारा।

फिल्म के गाने की तरह हम सब भी यही कहते हैं, जब से तुम्हें देखा था अब तक आंखों में तुम ही तुम हो। आशा पारेख जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1942 को सांता क्रूज बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे ही था। उनकी माता सुधा सलमा लखड़वाला एक बहरी मुस्लिम थी और एक फ्रीडम फाइटर थी, और फ्रीडम फाइटर के जीवन में वो कई बार जेल भी गई, और एक बार जब वो जेल गई तो उनके पेट में आशा जी थी। और आशा पारेख जी जब बड़ी हो रही थी तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फिर उनको एक ट्रेन एक्सीडेंट देखने का मौका मिला अपने जीवन में, मौका नहीं कहिए, बस ऐसे ही ट्रेन एक्सीडेंट देखा उन्होंने, और उन्होंने अपना मन बदल लिया। फिर प्रेमनाथ जी ने उन्हें एक स्टेज शो में देखा और उन्होंने एक कथक के निपुण हैं मोहनलाल पांडे, उनको कहा कि उनको सिखाएं सेंट एक्सेवियर्स कॉलेज बॉम्बे में एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। और उसी स्टेज परफॉर्मेंस में बिमल रॉय जी ने उनको देखा और उनको एक चाइल्ड एक्टर का रोल दिया, फिल्म थी माँ 1952। फिर उनकी एक जिसे कहते हैं, उसके बाद उन्होंने बहुत सी फिल्मों में, बहुत सी तो नहीं, कुछ फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर रोल किए। लेकिन एक मौका 1959 में आया विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में रोल के लिए, हीरोइन की रोल के लिए, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया ये कहकर कि ये स्टार मटेरियल नहीं है। उनकी जगह लिया गया अमिता जी को। और 8 दिन के बाद सुबोध मुखर्जी और राइटर, उस समय राइटर थे, बाद में वो डायरेक्टर बने, नासिर हुसैन जी फिल्म बना रहे थे दिल दे के देखो, और उसके लिए ऑडिशन हुआ और वो सिलेक्ट हुई, और हीरो थे शम्मी कपूर जी। बस फिर क्या था, जैसे कहते हैं द रेस्ट इज हिस्ट्री। नासिर हुसैन जी ने उनको अपनी आने वाली बहुत सी फिल्मों में रोल दिए, जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां, और सिलसिला कारवां का भी यूं ही चलता रहा।

0: 2:22 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का। कहीं जाइएगा नहीं, संदेशों के बाद फिर हाजिर होऊंगा आशा पारेख जी के गानों के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और आपकी पसंद पेश करने के लिए। और बहुत ही अच्छा समय है अपनी पसंद हम तक पहुंचाने का। और नंबर है 02-9816-2777 02-9816-2777।
1: There's so much happening at station sponsor North Ryde RSL. With free live entertainment in the Heritage Lounge and Marble Bar, Friday to Sunday, and low-priced ticketed featured acts in the club's auditorium each Saturday night. There are loads of free games and giveaways galore for members each week, together with the monthly mega draws. And with many quality dining choices, including the Riverviews Bar and Dining, Marble Bar and Cafe, Green Bar, Downstairs Bar and the House of Tong. Where? The North Ryde RSL, where community is our focus.
2: Hey there, are you aged between 10 and 14? Can you swim 50 metres of freestyle and breaststroke confidently? Well, if the answer is yes, then why not give water polo a try with the Ryde Water Polo Club? You'll just need to pay the entry fee to Ryde Aquatic Leisure Centre at 504 Victoria Road, Ryde. For more information, telephone Amy Jones on 0402 040 390.
3: Two Triple R is a not-for-profit community radio station that is dedicated to delivering you grassroots radio in multiple musical styles, points of view, topical programming and multiple languages. To continue our work, we need your support. Please consider making a donation via our website, 2rrr.org.au. Thank you for supporting 2RRR, your local sound to the world.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर अपने मनपसंद कार्यक्रम महक में, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल। कार्यक्रम आपको पसंद आता हो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए ताकि वो आपकी पसंद को अपनी पसंद बना सकें। और अब हम बात करेंगे जिनको शहीद आज़म का नाम दिया गया है। शहीद आज़म इसलिए कि उनकी शहादत जो है वो सबसे अलग है, सबसे ऊपर है। और उनके नाम से जब भी भारत के आज़ादी की बात आती है, आज़ादी की लड़ाई की बात आती है, तो क्या होता है, उन्हीं का नाम सबसे पहले लिया जाता है। नाम कलाकार का मनोज कुमार, फिल्म भगत सिंह की बारे में, राजगुरु सुखदेव के बारे में फिल्म का नाम शहीद।

भगत सिंह, जन्म 28 सितंबर 1907, चक नंबर 105, बंगा, जरावाला तहसील, लायलपुर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है। पिता किशन सिंह संधू, माँ विद्यावती, पूरा परिवार देश सेवा में। दादा स्वामी दयानंद जी के साथ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। पिताजी और उनके भाई गदर पार्टी के सदस्य बने। 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग देखने गए, जहां हजारों बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। 1923 में पंजाब साहित्य सम्मेलन का एसे कंपटीशन लिखा और जीते। टॉपिक था पंजाब की मुश्किलें। 1926 में नौजवान भारत सभा शुरू की खुद उन्होंने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में भी शामिल हुए, जिसके नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाकुल्ला खान। घर वालों द्वारा तय शादी से बचने के लिए घर से भाग गए, चिट्ठी छोड़ गए, मेरा जीवन देश को आज़ाद कराने के लिए समर्पित है, इसलिए अब आराम नहीं, कोई भी सांसारिक इच्छा नहीं बहला सकती मुझे। लाला लाजपत राय द्वारा आयोजित साइमन कमीशन के खिलाफ आयोजित मार्च पर जेम्स स्कॉट ने लाठी चार्ज किया और उनके साथ लाला लाजपत राय उनके कारण इन लाठी चार्ज के कारण घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आज़ाद ने स्कॉट की हत्या की साजिश रची, लेकिन गलत पहचान के कारण उन्होंने जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। 17 दिसंबर 1928। जवाहरलाल नेहरू जी ने भगत सिंह के बारे में घटना के बाद लिखा, भगत सिंह आतंकी काम के कारण मशहूर नहीं हुए, बल्कि इसलिए कि सबको लगा कि उन्होंने लाला लाजपत राय के सम्मान का बदला लिया और ऐसा करके देश का सम्मान किया। ये याद रहे सबको। उनके लिए उनके गाने लिखे गए, उनको जो लोकप्रियता मिली वो अद्भुत है, ऐसा लिखा जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय जब भारत आज़ाद नहीं था और सरदार भगत सिंह को ऊपर ये आरोप लगे थे।

तो लाला लाजपत राय जी की हत्या के बाद इन तीनों ने ठान लिया कि उसका बदला लेंगे। हत्या के बाद चंद्रशेखर ने पुलिस को रोकने के लिए फायर किया और तीनों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भागने में सफल हो गए। एक जगह छुपने के बाद लाहौर से बठिंडा और आगे कलकत्ता के लिए निकले और रेल में उनकी मदद की दुर्गा देवी ने और कलकत्ते में भी उनको पनाह दी और अपने बच्चे के साथ ट्रेन में उनका उनके साथ सफ़र किया। भगत सिंह ने बाल कटवा लिए थे, लगा एक परिवार सफ़र कर रहा है। राजगुरु ने नौकर बनकर उनके साथ सफ़र किया। 8 अप्रैल 1929 असेंबली में बटुकेश्वर दत्त जी के साथ धुएं वाले बम फेंके पब्लिक गैलरी से। उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहीं डटे रहे, वहां से भागे नहीं।

एक पम्प फैक्ट्री में जहां वो छुपे हुए थे उसमें छापा डाला पुलिस ने और सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया। असेंबली में बम और बम फैक्ट्री के तार जोड़ते हुए उन्हें यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर सॉन्डर्स की हत्या का केस चलाया। 31 अक्टूबर 1930 अदालत ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। प्रीवी काउंसिल में सजा के खिलाफ अपील की गई। उस समय सुप्रीम कोर्ट है जैसे आजकल, उसी तरह से प्रीवी काउंसिल भी होती थी और आजकल राष्ट्रपति के सामने सजा के खिलाफ अपील की जाती है कि माफ़ की जाए। उस समय प्रीवी काउंसिल के पास जाती थी ये अपील। कांग्रेस प्रेसिडेंट मदन मोहन मालवीय जी ने 14 फरवरी 1931 को वाइस रॉय लॉर्ड अरविन से अपील की, वो भी नाकाम रही। 24 मार्च 1931 का दिन फांसी के लिए तय हुआ। सार्वजनिक गुस्सा जनता में, क्या पूरे देश में फैला हुआ था इस सजा पर। फांसी को एक दिन पहले ही अंजाम दिया गया। 23 मार्च 1931 की शाम को 7:30 बजे तीनों को फांसी दी गई। जेल की दीवार तोड़ी गई। उस तोड़ी हुई दीवार के पार उनके शरीरों को सतलुज के किनारे ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां सतलुज में ही बहा दी गईं। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को हमारा बहुत बहुत प्रणाम।

आइए वापस चलें आशा पारेख जी के गानों के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और आशा पारेख जी ने, जैसे मैंने कहा, जब उनका साथ हुआ उनके जैसे कहते हैं कि चहेते डायरेक्टर जी के साथ, और उनके बारे में आपको मैंने बताया ही था, और जैसे ही उनका साथ हुआ उनके साथ नासिर हुसैन जी के साथ, तो एक के बाद एक बढ़िया फिल्में उन्होंने बनाई उनके साथ और सभी के सभी अत्यंत ही सफल हुई। और ऐसी ही एक फिल्म थी आशा पारेख जी की और मनोज कुमार जी के साथ, ये माफ़ कीजिए, वो फिल्म का गाना मैं आपको थोड़ी देर में सुनाता हूँ। और ये फिल्म मेरे सनम विश्वजीत जी के साथ थी 1965 में, और इसका ये गाना अत्यंत ही सफल हुआ था। पेश है आपके लिए, जाएं जाइए आप कहाँ जाएंगे, और हमारा नंबर है 02981622777।

1965 की फिल्म मेरे सनम का ये प्यारा सा गाना जो फिल्माया गया था आशा पारेक और विश्वजीत पर, एक फरमाशी गाना था। और अगला गाना सुनाने से पहले आज मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि उस इस बात की जो इस पूरे सप्ताह छाया रहा समाचार पत्रों में और टेलीविज़न पे और रेडियो पर, और ये समाचार थे SIR और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी के बारे में। और बहुत से लोगों ने इसके बारे में अपनी अपनी बात रखी और विरोध किया वगैरह वगैरह, तो उसी पर है ये समाचार जो आपके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ। 5 अक्टूबर को SIR पर विरोध में उद्धव ठाकरे निकले और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया, कहा महाराष्ट्र में हुए SIR को रद्द किया जाए, सरकार किसकी बनेगी ये फैसला जनता को तय करना है, चुनाव आयोग को नहीं, ज्ञानेश कुमार BJP का हथियार है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उज्जवल भुइयां एक समारोह में भाग ले रहे थे और ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में था, तो उज्जवल भैया ने इतवार के दिन कहा भारतीय नागरिक की नागरिकता और उसका वोटिंग राइट एक दूसरे से जुड़े हैं, किसी भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार और पूरा अधिकार है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, और इस अधिकार से वंचित करना उसे अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने जैसा है। संविधान के सेक्शन 326 के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, क्या कहेंगे अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, ये मेरा सवाल है। और उन्होंने यही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस अधिकार के अधीन दो तरह के नागरिक नहीं हो सकते, एक वो जो वोट का अधिकार वाले हों और दूसरे वोट के अधिकार से वंचित, ऐसे क्लासेस नहीं हो सकती, नागरिकता और वोट का अधिकार एक साथ ही चलता है, भारी गिनती में वोट का अधिकार छीनना और गैर संवैधानिक बातें ऐसी करना बिल्कुल गलत है। मेरा सवाल इस बारे में यह है कि क्या प्रजातंत्र शासकों का कड़ा आदेश है, यानी जो शासक कहें, जो हमारे लीडर हैं वो जो कहें वो ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है, या जनता और नागरिकों के अधिकार। और बातें करेंगे इस बारे में आगे चल के, लेकिन सबसे पहले पेश है अशोक की पसंद फिल्म है घूंघट, बहुत ही प्यारा गाना है ये। माफ कीजिए,

अत्यंत ही प्यारा गाना महक 2RRR 88.5 FM पर आप सुन रहे हैं, सुन रहे थे। और अब फिर वापस चलते हैं, बात करें इस मुद्दे की जो बहुत ही फैला हुआ है आजकल भारत

तो पूर्व सिविल सर्वेंट्स और सामाजिक आंदोलन कारियों ने मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की है और जारी की है वो दायर नहीं की। चार्जशीट में 6 आरोप हैं जिनके आधार पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के को पद छोड़ने और आर्टिकल 324/5 के अधीन इम्पीचमेंट की मांग की गई है। आरोप यह है कि बिना अन्य इलेक्शन कमिश्नर अफसरों के सहयोग से उन्होंने फैसले किए, फॉर्म 6 में अनऑथराइज्ड बदलाव किए। ईसीआई नेट जो इलेक्शन कमीशन का इंटरनेट है, ईसीआई नेट का गैर कानूनी प्रयोग किया, एसआईआर द्वारा भारी गिनती में नागरिकता से लोगों को वंचित किया, ईसीआई की निष्पक्षता पर दाग लगाया, वैधानिक फर्ज नहीं निभाया। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया टुडे की 6 अक्टूबर के समाचार में कि फॉर्म 6 में बदलाव पर इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी है और कहा कि फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, एक डिक्लेरेशन का पेज ज़रूर उसके साथ अटैच कर दिया गया है। अब आप ही सोचिए, इस किसी फॉर्म के साथ आप कुछ और कंडीशंस अटैच कर दें तो वो बदलाव ही हुआ ना, लेकिन वो कहते हैं ये बदलाव नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि लीगल एक्सपर्ट्स ने जो है इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इसके लिए भी गजेट किया जाना चाहिए था और पार्लियामेंट को पूरी सूचना दी जानी चाहिए थी। और 7 और 8 अक्टूबर को लगातार विपक्ष सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरा। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, और कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया जब वो प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी पर FIR दर्ज की और उनको और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया। और बातें थोड़ी देर में, लेकिन अब शांति की पसंद पर पेश है आशा पारेख जी की पहली और हिट फिल्म शमी कपूर जी के साथ दिल देके देखो का ये बेहतरीन गाना महक 2RRR 88.5 FM पर। माफ कीजिए, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है और मैं कोशिश करता हूँ कि ये गड़बड़ ना हो और आपको पूरा गाना जो है सही तरीके से सुनाई दे। और तो ये गड़बड़ क्यों हो रही है मैं कोशिश करता हूँ पता करने की, और ये गड़बड़ हो रही है इसलिए और इसका पता चल गया है। और अब पेश है आपके लिए वो गाना जिसको शांति जी ने पसंद किया है।

और अब फिर बात करें इस समाचारों के बारे में जो छाए रहे पिछले सप्ताह पूरे समाचारों में। दिल्ली पुलिस ने नए नियमों की घोषणा कर दी पिछले सप्ताह। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए अब जो भी विरोध प्रदर्शन करना चाहता है उसे 10 दिन पहले अनुमति मांगनी होगी और प्रदर्शन में 1,000 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। 1,000 से 50,000 लोग तक अगर लोग होंगे तो उसका प्रदर्शन रामलीला ग्राउंड में होगा और 50,000 से अधिक लोग होंगे तो बुराड़ी नाम की जगह जो दिल्ली में है वहां होगा। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलकर SIR के बारे में बात रखी अपनी पक्ष की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा पद का दुरुपयोग करने और वोटर्स के अधिकार को छीनने और वोट चोरी हो रही है ऐसा कहा उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। बीजेपी और ज्ञानेश कुमार के बीच मिलीभगत है ऐसा भी कहा उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। और मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने हमारी बात सुनी और उसे नकारा नहीं, ये बहुत अच्छा साइन है उनके अकॉर्डिंग। द वायर 8 अक्टूबर को समाचार आया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा का पद एक 1977 के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा एक कैबिनेट रैंक का पद है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन द्वारा विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी जो है उसको शांतिपूर्वक ढंग से विरोध करना, प्रदर्शन करना, सरकार और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना, इसका अधिकार दिया जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के बार बार प्रदर्शनों से बलपूर्वक पुलिस द्वारा उनको उठाकर थाने ले जाना इसके बिल्कुल विरुद्ध है। और एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, आप में से कुछ ने उनके यूट्यूब्स पर वीडियो देखी होंगी, तो यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बंगलुरु में जो है कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से बोलते हुए कहा शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोच रहे होंगे कि इस सज्जन को क्या तकलीफ है, यानी ध्रुव राठी को क्या तकलीफ है, लेकिन मुझे ही नहीं पूरे देश को तकलीफ है। मुझे ना ही इलोन मस्क और ना ही सोरोस ने फंड दिए हैं यहाँ आने के लिए। तो ये सब बातें हो रही हैं भारत में। और अब जो खाना आपके लिए लेकर आया हूँ वो माही की पसंद का है और ये है फिल्म लव इन टोक्यो। ये आशा पारेख जी की बहुत ही और जॉय मुखर्जी की बहुत ही एक मशहूर फिल्म है।

0: माफ कीजिए इस रुकावट के लिए, और
1: सुर में गाना सीखिए,
0: कोशिश करते हैं आपके लिए ये गाना चालू रहे। और

सुबेदार जोगिंदर सिंह परमवीर चक्र विजेता, जन्म 26 सितंबर 1921। जोगिंदर सिंह का जन्म हुआ माला कला मोगा डिस्ट्रिक्ट में 26 सितंबर 1921 को। बचपन वहीं बीता, फिर शादी हुई 28 सितंबर 1936 को। 15 साल की उम्र में फौज में भर्ती हो गए। फर्स्ट सिख रेजिमेंट में पोस्टिंग हुई। पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाई। आर्मी एजुकेशन एग्जामिनेशन पास किया। यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर नियुक्त हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा फ्रंट पर, और 1947 और 48 के इंडो पाक वॉर में श्रीनगर में सेवा दी। 9 सितंबर 1962 को डिफेंस मिनिस्टर वी के कृष्णमेनन ने फैसला किया थाला रिज। थाला रिज एक जगह है हिमालय में चीन के बॉर्डर पर, तो थाला रिज से चीनी सेना को निकालने का फैसला किया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सहमति दी। 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसमें फर्स्ट सिख भी शामिल थी, नामका चू भेजी गई। ये जगह चीन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी। भारत की नामका चू पर कमजोर पकड़ के होते चीन ने हमला कर दिया। भारी नुकसान के बावजूद भारतीय सेना ने मुकाबला किया। चीनी सेना त्वांग की ओर बढ़ी। आधे रास्ते बूमला पास के पास तैनात फर्स्ट सिख के 20 सैनिकों का उनसे उन सामना हुआ।

इस पोस्ट जो बुमला के पास पोस्ट था, वहां चीनी सेना ने हमले किया, वहां भारी नुकसान के बावजूद भारतीय सेना ने मुकाबला किया। चीनी सेना त्वांग की ओर बढ़ी, आधे रास्ते बुमला पास पर तैनात फर्स्ट सिख के 20 सैनिकों का सामना हुआ। इस पोस्ट की कमांड कर रहे थे सूबेदार जोगिंदर सिंह, और चीनी सेना ने 200 सैनिकों के साथ हमला किया, और 200 सैनिकों के इस हमले का मुकाबला करने के लिए थे केवल 20 सैनिक। सूबेदार जोगिंदर सिंह की प्लाटून के सैनिकों ने मुकाबला किया और चीनी सेना को पीछे धकेल दिया। मुकाबले में 10 सैनिक शहीद भी हो गए और सूबेदार जोगिंदर सिंह भी घायल हो गए, लेकिन रणभूमि छोड़ने से इनकार कर दिया और उन्होंने जल्दी ही अपने साथियों को इकट्ठा किया और उनको विश्वास दिलाया कि उनके पीछे वो आए और सेना में सैनिकों चीनी सैनिकों का मुकाबला करें। और ऐसा करते करते उन्होंने दो बार 200 सैनिकों चीनी सैनिकों को वापस भेजा और उनके कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा। 23 अक्टूबर 1962 को इस हमले में शहीद हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र के साइटेशन में लिखा गया, सूबेदार जोगिंदर सिंह कमांडर थे टोंग पेनला नेफा में सिख रेजिमेंट के प्लाटून के। 23 अक्टूबर 1962 के दिन सुबह 5:30 बजे चीनी सेना ने त्वांग की ओर बढ़ते हुए बुमला पर हमला किया। 200 सैनिकों के दल से दुश्मन ने हमला किया। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने इस दल को मौत के घाट उतारा। फिर 200 सैनिकों के दूसरे दल ने हमला किया। सूबेदार जोगिंदर सिंह की प्लाटून के आधे सैनिक शहीद हो चुके थे और वो भी जख्मी थे, लेकिन मैदान छोड़ने से इनकार किया। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने खुद लाइट मशीन गन चलाते हुए चीनी सैनिकों का सामना किया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया।

और जैसा मैंने पहले बताया, सूबेदार जोगिंदर सिंह ने जख्मी होने के बावजूद मैदान छोड़ने से इनकार किया और लाइट मशीन गन उठाई और उसे चलाते हुए चीनी सैनिकों का सामना किया और दुश्मन का भारी नुकसान किया। भारी नुकसान के बावजूद दुश्मन ने तीसरी बार 200 सैनिकों के दल से हमला किया और जब स्थिति काबू से बाहर हो गई तो सूबेदार जोगिंदर सिंह और बचे हुए साथियों ने बैनेट्स के साथ दुश्मन पर हमला किया।

और जब तक दुश्मन उन पर काबू पाता, उन्होंने बड़ी गिनती में दुश्मन को मार गिराया। इस पूरे एक्शन में सूबेदार जोगिंदर सिंह ने कर्तव्य के लिए निष्ठा, प्रेरणा नायक नेतृत्व और सिरे की बहादुरी दिखाई। सूबेदार जोगिंदर सिंह को हमारा भी शत शत प्रणाम।

हाँ, ये चलें आशा पारेख जी की फिल्मों के गानों की ओर वापस। और अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, आशा पारेख जी ने एक फिल्म की थी जॉय मुखर्जी के साथ, और फिल्म का नाम था फिर वही दिल लाया हूँ। और आशा भोसले जी ने इस गाने में अपनी मधुर आवाज़ दी है। बहुत ही प्यारा गाना है ये, और गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं, आँखों से उतरी है जो दिल में। बहुत ही प्यारा गाना है।

और कुछ और बातें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के SIR प्रोजेक्ट में जो कथित हेराफेरी है उसके बारे में हो रही हैं, दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर के कॉकरोच जनता पार्टी आयोजित प्रदर्शन को इजाज़त नहीं दी। जैसा मैंने बताया, उन्होंने कहा 10 दिन पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। और यही नहीं, प्रशासन ने इंटरनेट की सेवाएं भी सस्पेंड कर दी। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, दिल्ली आने वाली ट्रेनें बंद कर दी, सड़कों पर भी दिल्ली बॉर्डर्स पर वाहन यानी बसेस कार्स वगैरह उनकी चेकिंग शुरू कर दी। होटलों और गेस्ट हाउसेस को ऑर्डर दे दिया कि प्रदर्शन के लिए आए लोगों को न ठहराएं। नए डिटेंशन सेंटर बनाए गए दिल्ली के सभी मुख्य इलाकों में। और इस बारे में मेरा विचार, विरोध प्रदर्शन होने से नहीं, इन सब पाबंदियों से जनता के हित ज़्यादा आहत होते हैं। 11 अक्टूबर आज जनसत्ता समाचार पत्र में आया कि दिल्ली पुलिस ने भारी संख्या में कथित तौर पर 7,000 लोगों को हिरासत में लिया पूरी दिल्ली में। और जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली हवाई अड्डे पर जहाज लैंड करते ही जहाज में ही अरेस्ट कर लिया गया। मुंबई में ध्रुव राठी को अरेस्ट किया गया। बाद में प्रदर्शनकारियों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ा गया। और 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी उनके घरों से और प्रदर्शन के लिए निकले सड़कों पर से हिरासत में ले लिया गया। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के पिनराई विजयन और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री CPI से जो हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। वो अभी भी हिरासत में हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने घोषणा की है कि जंतर मंतर पर आज भी प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का नारा है, ज्ञानेश कुमार को जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई वकील कपिल सिब्बल की अगुवाई में दायर अपील पर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और उनके 2 साथी सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस की बेंच द्वारा यह अपील सुनी गई। अपील में कहा गया कि मेट्रो रेल और बसों को रोकने से आम आदमी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इंटरनेट बंद करने से सभी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और पूरी दिल्ली बंद है। बेंच ने सुनवाई के बाद ये माना कि ऐसा ही हो रहा है। तो ये थी कुछ बातें इस प्रदर्शन और इस विरोध के बारे में, और उम्मीद है इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। और अब जो गाना आपके लिए मैं लाया हूँ वो सुधा की पसंद का है, लता जी की आवाज़ है, और ये है फिल्म 2 बदन का। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए।

0: अब स्टूडियो की घड़ी पर 3:30 बजने वाले हैं, 3:30 और अब समय है कुछ संदेशों का।
1: Where's a great place to socialise or hold a function?
2: The Bizzo Club Eastwood with its ultra-friendly and personal atmosphere.
1: Get your friends together and enjoy exciting cocktails, cool wine and champers, fantastic spirit mixes, or a great choice of cold draft and craft beer with appetising bar snacks.
2: You can watch live sports on the big screen and place a bet on the TAB.
1: 2RRR sponsor, The Bizzo Club Eastwood. A great place to meet.
2: The Bizzo Club Eastwood on Hillview Road, close by West Parade.
3: You know, solving mysteries isn't just about investigating clever whodunits. How about becoming a nature detective and solving a very different kind of mystery? Your challenge is to discover and record as many wild species of flora and fauna, including fish and fungi, over 4 days and nights, from Friday the 27th of November to Monday the 30th of November. It's all part of the Hunters Hill Southern Bio Blitz, one of the biggest biodiversity surveys in the Southern Hemisphere. So, if you're ready to put your detective skills to the test, search Hunters Hill Southern Bio Blitz to find out how you can take part, or call Hunters Hill Council on 9887 9400. So, Sherlock Holmes, are you ready to solve nature's greatest mystery?
4: We interrupt our program to bring you this important message.
5: If you love listening to 2RRR, you should join the community and become a member. 2RRR membership allows you to get involved in all aspects of broadcasting and supports 2RRR to stay on air. Download an application at 2RRR.org.au or phone us on 9816 2988 for more information. Let your voice be part of your local sound. 2RRR.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर अपने मनपसंद कार्यक्रम महक में, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल। आज आपके लिए पेश कर रहा हूं आशा पारेख जी की फिल्मों के गाने। आशा पारेख जिनको हिट गर्ल कहते थे, हिट इसलिए कि उनकी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फिल्म हिट होती थी और सभी इसीलिए देखने जाते थे कि उसमें आशा पारेख जी हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी और ये फिल्म थी शिकार 1963। इसमें एक गाना था जो उन पे फिल्माया गया था और अत्यंत ही पॉपुलर हुआ था और ये एक फरमाशी गाना भी है। तो पेश है आपके लिए पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ।

जनसत्ता समाचार पत्र 6 अक्टूबर। समाचार ये आया कि स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट गाई परमेलिन भारत की यात्रा पर आए। दोनों देशों के बीच 5 समझौते साइन किए गए, उनमें से एक है यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज स्कीम, जिसमें दोनों देशों के युवा एक दूसरे के देश में जाएंगे और वहाँ पे काम करेंगे या पढ़ाई करेंगे और एक दूसरे के देश के बारे में जानेंगे। भारत में 330 स्विस कंपनियाँ काम कर रही हैं। मुझे नहीं मालूम था कि 330 स्विस कंपनियाँ भारत में काम कर रही हैं। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स भी इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेसिडेंट गाई परमेलिन को 3 तरह की भारत की अवार्ड विनिंग चीज भेंट की। आप जानते हैं स्विट्जरलैंड अपनी चीज के लिए जाना जाता है, तो भारत पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें गुलमर्ग, कोनार्क और ये ऊर नाम की चीजें भेंट की और हम भेंट कर रहे हैं आपको आपकी पसंद। और आपकी पसंद जो है वो है फिल्म छाया का ये गीत महक 88.5 FM पर। और इस गाने को राधा ने पसंद किया है।

नवभारत टाइम्स में समाचार आया 8 अक्टूबर को कि इलॉन मस्क, जानते ही हैं संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हैं इलॉन मस्क, ने एक्स नाम के सोशल मीडिया जो उन्हीं का अपना है प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और कहा स्टारलिंक इंटरनेट जो उनका इंटरनेट सेवा है, एक सैटेलाइट सेवा, स्टारलिंक इंटरनेट सेवा कई अड़चनों के कारण भारत में अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा भारत के बड़े उद्योगपतियों पर ये इस बात की जिम्मेवारी जाती है कि उन्होंने इसको नहीं होने दिया। उनके अनुसार इन उद्योगपतियों के कारण स्टारलिंक सेवाएं भारत में जगह नहीं बना सकी। मस्क ने इसे भारतीय जनता के साथ अपराध करार दिया। कथित तौर पर अब जियो भी सैटेलाइट इंटरनेट ला रहा है। आप समझ गए इलॉन मस्क का इशारा किस तरफ है। इस साल महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर, एफडीए कमिश्नर अपॉइंट हुए तुकाराम मुंडे, और जब से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है तब से उनके इंस्पेक्टर्स वो सख्ती से कानून लागू कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और कई जाने माने रेस्टोरेंट जो मुंबई में भी हैं उनके इंस्पेक्शन के बाद उन्हें कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। शामिल हैं पिज्जा हट, डोमिनो, ब्लिंकिट, जिप्टो जैसी सेवाएं। मुंबई के ऐतिहासिक रेस्टोरेंट्स भी उनमें शामिल हैं। जनता में उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पर आर्टिकल छापा, इन इंडिया अ फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर इज ए रॉक स्टार, और ये था हेडिंग उनके बारे में, तुकाराम मुंडे के बारे में आर्टिकल का। और आपको बता दूं कि इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2026 में भारत के 4 गोल्ड आए हैं, 1 सिल्वर आया है। इस साल 64 देशों से 307 छात्रों ने भाग लिया था इस बात में। और आपको बता दूं कि खेल की दुनिया में और क्या हो रहा है। क्रिकेटर कपिल देव ने गोल्फ को जनता में क्रिकेट की तरह पॉपुलर करने का बीड़ा उठा लिया है। उन्होंने कहा क्रिकेट भी किसी समय में राजा महाराजाओं का खेल समझा जाता था, और अगर खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म दिए जाएं तो कोई भी खेल आगे बढ़ सकता है। एशियन गेम्स में महिला गोल्फ खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, इसके लिए कपिल देव ने उन्हें बधाई दी। और क्रिकेट जितना पैसा गोल्फ में नहीं है, इसलिए शायद गोल्फ पॉपुलर नहीं हो रहा है। और पर्दे की दुनिया की बातें करें तो हनुमान अंश नामक फिल्म जो काफ़ी मशहूर हुई है, फिल्म देखने के बाद भारी गिनती में श्रद्धालु उत्तराखंड में कैची धाम पहुँच रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि सोच समझकर ही कैची धाम पहुंचे ताकि भीड़ न बढ़े और भीड़ से होने वाले हादसे न हो। दृश्यम 3 पिक्चर, अजय देवगन, दृश्यम 1, दृश्यम 2 और अब दृश्यम 3, 95 करोड़ की आमदनी की पहले ही दिन, 265 करोड़ रुपए की आमदनी की पहले ही सप्ताह, और अब तक 400 करोड़ पार कर चुकी है। शेखर टुनाइट शो है एक, जिसे शेखर सुमन देते हैं, इसमें संजय दत्त ने कह दिया उसमें भाग लेते हुए, भारतवासी बहुत प्यारे लोग हैं, शांति प्रेमी हैं, लेकिन मुझे अब शांति नहीं दिखती देश में। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर इस पर वाद विवाद होने लगा और लोगों ने कहा अच्छा नहीं किया वगैरह वगैरह। तो जमकर विरोध होने के बाद संजय दत्त ने फिर एक वीडियो जारी किया जहां उन्होंने कहा किसी की भावनाएं नहीं आहत करना चाहते थे वो शो स्क्रिप्टेड था, यानी जो स्क्रिप्ट में लिखा था वही उन्हें बोलना पड़ा, इसलिए माफ़ी चाहते हैं अगर किसी को बुरा लगा हो तो। और हम बातें करेंगे अपने जन्मभूमि की इस गाने के बाद, और ये गाना है एक फरमाइशी गाना और फिल्म है जब प्यार किसी से होता है, और इसमें आवाज़ है लता जी की।

0: बातें कुछ इधर की कुछ उधर की, हमारी जन्मभूमि की महिलाओं पर अत्याचार वगैरह की समाचार तो आते ही रहते हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें उनसे बहुत घृणा होती है और आपको बताते हुए बड़ा दुख होता है, लेकिन अब उससे भी बढ़कर बदतर बेकार समाचार आने लगे हैं। छोटे बच्चों पर हिंसा के समाचार, सूरत की एक सोसाइटी में बच्चों के खेलने की जगह पर एक बच्चे से खेलते हुए दूसरे बच्चे को गेंद लग गई, तो उस बच्ची के पिता ने, एक पुरुष जो है, उसने अपनी बेटी पर लगी इस बॉल का बदला लेते हुए शायद जो है उस बच्चे को थप्पड़ों से, उस बच्चे की थप्पड़ों से पिटाई कर दी। और अमृतसर में भी एक सड़क पर एक वीडियो में एक महिला छोटे बच्चे को पीटती दिखाई दे रही है। कारण उस वीडियो में नहीं बताया गया। समाज किस दिशा में जा रहा है, यही मेरा सवाल है। गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मध्य प्रदेश में कथित तौर पर स्ट्रेचर ना उपलब्ध होने पर अपने एक बहन अपने बीमार भाई को पीठ पर उठाकर वार्ड में ले जाती दिखाई गई है वीडियो में। अस्पताल अथॉरिटीज ने इसके बारे में कहा, सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ है, स्ट्रेचर भी है, सब कुछ है, वार्ड बॉय भी है, वगैरह वगैरह। अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नवजात लड़की की हत्या कर दी गई गला घोंट कर। मेरा सवाल यही है, हमेशा जो होता है, लड़कियों और महिलाओं पर अत्याचार कब रुकेगा? 2.5 लाख की एक सालाना आमदनी वाले परिवारों की महिलाएं जो हैं, उनकी शादी में तमिलनाडु सरकार 8 ग्राम सोना और एक रेशमी साड़ी देगी, चीफ मिनिस्टर विजय ने कहा है। और गुजरात के एक एमएलए बच्चू भाई खाबड़ के दाहोड़ में जो उनका घर है उसकी बाहर से सफाई करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी हुई। यह हंसी की बात नहीं है, मुझे हंसी आ रही है, लेकिन सोचिए जरा गवर्नमेंट की चीज़ों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और हमारी कर्मभूमि की बात करें तो लिबरल्स और नेशनल्स कोअलिशन के नेता एंगस टेलर ने अपनी एक नई पॉलिसी बयान की है, ट्रेड्स एफिशिएंसी फॉर माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक मॉडल। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस माइग्रेशन पॉलिसी से सस्ते विदेशी कर्मियों की कमी से डिलीवरी सर्विसेज जैसे उबर और डीडी जैसी टैक्सी सेवाएं, उन पर असर पड़ेगा। न्यू साउथ वेल्स कोर्ट चाहती है कि गवर्नमेंट माफ कीजिए न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट चाहती है कि सिडनी के वुलाहार स्टेशन जो है उसके आसपास के जगहों पर 10,000 नई यूनिट्स बनाएं। वुलाहार काउंसिल ये नहीं चाहती। देखना यह है कि अब 10,000 परिवारों को शहर के पास शांत वातावरण में रहने का मौका मिलता है या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कार्ड पेमेंट पर सरचार्ज बैन कर दिया है 1 अक्टूबर 2026 से। अब अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई खरीद करते हैं तो आपको सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, उसको देना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ है कि व्यापारियों ने कई जगह कीमतें बढ़ा दी, कुछ ने कार्ड पर पेमेंट पर मिनिमम अमाउंट लगा दिया कि इससे कम नहीं आप खरीद सकते, और कुछ ने तो कार्ड लेना ही बंद कर दिया, और कईयों ने तो वहाँ पे अपने दुकान के बाद नोटिस लगा दिया है कि अब कैश ही लेंगे। और अगले सप्ताह जिन कलाकारों के जन्मदिन हैं उनमें शामिल हैं अमिताभ बच्चन, हेमा, जिनका आज जन्मदिन है, हेमा मालिनी, स्मिता पाटिल, सिमी गरेवाल, मीरा नायर जिन्होंने मॉनसून वेडिंग बनाई, और उनके बेटे जोरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर हैं, और अशोक कुमार जी, स्वर्गीय अशोक कुमार जी। और मशहूर लोगों में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, और मिल्खा सिंह जैसे जिन्हें फ्लाइंग सिख कहते हैं, अनिल कुंबले, जयप्रकाश नारायण, गौतम गंभीर, अरुण खेत्रपाल जो परमवीर चक्र विजेता हैं, और विजय मर्चेंट जो एक क्रिकेटर हैं। और अब कार्यक्रम का समय समाप्त होने को आ गया है, आपसे इजाज़त लेने का समय आ गया है, और कार्यक्रम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और एक दूसरे का ध्यान रखें, और मुझे सुखदेव जसवाल को आगे दें, नमस्कार। अंतिम गाना जो है वो आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ मैं आन मिलो सजना फिल्म से, नमस्कार।
1: अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा